गंधर्व जच रच शुभ चारा भूत भवक भवन कहानी घट घट के पट पट की जानी तात मज जात न पाता एक रंग का हूं नहीं राता सर्व ज्योत के बीच समाना सब हूँ सर्व ठौर पहचाना काल रहत अन काल स्वरूपा अलख पुरख अवगत अवधूता जात पात जय चेहना बरना अवगत देव अच्छे अन भरमा सबको काल सबन को करता रोग सोग दोकन को हरता एक चेत जह एक छिन ध्यायो काल फांस के बीच न आयो। तो प्रसाद कबित कहत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो कहत हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो कहत हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भी कहूँ माँ दान हो के मांगे धन देत हो कहूँ माँ राजद को दीजत आनंदान कहूँ माँ राजंत छीन शेत लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तास बेपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जाच गंधर्व उरक कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ होय के हिंदू आ गायत्री को गुपत जपे हो कहूँ होय के तोर का पुकारे बांग देत हो कहूँ कोब काव होय के पुराण को पढ़त मत कहूँ कुरान को निदान जान लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पद विषि कहूँ इंद्र पद विषि पाए छीन लेत हो कहतु विचार विचारत को विचारत हो कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत हारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठौर गामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होय पदारे कहूँ फूक फूक पान को पृथ्वी पर धरत हो कहत हूँ सिपाही हो के सादत सिलाहन को कहूँ क्षत्रिय कर मारत मरत हो कहूँ भूम भार को उतारो तो महाराज कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो कहूँ गीतनाद के निदान को बतावो तो कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निदान हो कहतु पयुग हो के पीवत पीवावत हो कहतु मयुग कहूँ मद पान हो कहूँ माँ सूर हो के मारत मवासन को कहूँ माँ देव देवतान के समान हो कहूँ महादीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतस कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छत्र धारी कहूँ छाला धारे छैल भारी कहूँ छक वारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजाया कहूँ नृत्य के नचाया कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेद वाणी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजाया कहूँ धेन के चरया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो निर्जोर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की तो मानी महामान हो विद्या के विचारों के अद्वै अवतारों के शुद्धता की सूरतों के शुद्धता की शान हो
जो बन के जालों के कालों के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो। कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को ननाद कहूँ पूरन भगत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो। पूरन प्रताप कहूँ।

सर्व ठाउर एक से लगत हो तो प्रसाद सबये। श्रावक सो समूह सिधान के देख फिर खर जोग जति के सोर सुराधन सोद सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंगन जरे जड़ संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोटक तुरंग कुरंग से उदत पौन के गौन को जात निवारे। भारी भुजान के भूप विलीवित नावशीष ना जात बिचारे एते भय तो कां भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब दे दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसति है राज हजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन कने नहीं जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहांद आदम दान सो संजम नेव अनेक विषेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन हार जति जद हार सब सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुभा दुरंद वासो सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत बंग हलैना हलेंगे तोर अरीन मरोर मासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचार सार की धार बछैया तोर देश मलिन मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचन एक सो एक दिवैया दानव देव फनी निशाचर भूत भगवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाए दुन पापन के पाव पुंज खपाएंगे सास समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधिप जौंत्र लोग को राज करेंगे कोटि स्नान गजाधिक दानिक स्वयंवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विषण सचिव अंत फसे जम फांस बरेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पाग ते नर फेर न देह धरेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सास संबंध लोक गयो पर लोक गवायो बास की ओ बिख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो

आहन पूजा सरियो सिर काहू लिंग कर लटकायो काहू लखियो हरा वाची दिशा में है काहू पछा को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो पूर क्रिया और जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड उतल प्रताप सब थापियो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुख चार बकत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित थाप जय कीन जगत पसार रचो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत प्रसार अभ्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार के ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिन नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनिंद्र कई देव आद कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुचार कई रुद्र क्षुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र स्मृत बखान कहु कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहु जोग भेष उदास कहु निवली कर्म करंत कहु बौन हार दुरंत कहूँ तीरथ दान पार कहूँ जग कर्म उदार कहूँ अगन होत्र अनूप कह न्याय राज विभूत कहूँ शास्त्र स्मृत रीत कहूँ वेद सिंह विपरीत कही देह देश फिरंत कही एक ठौर स्थंत कहूँ कर जलमय जाप कहूँ सहत तन प्रताप कहूँ बाज बने करंत कहूँ ताप तनह सहंत कहूँ ग्रह धर्म पार कहूँ राज रीत उदार कहूँ रोग रहत अभरम कहूँ कर्म करत अकर्म कहूँ सेग ब्रह्म स्वरूप कहूँ नीत राज अनूप कहूँ रोग शोक विहीन कहूँ एक भगत अधीन कहूँ रंग राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार कही ब्रह्म वेद रटंत कही शेक नाम उचरंत बैराग कहूँ संन्यास कहूँ फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नहपल मान इबिन एक नाम धार सब कर्म भरम विचार तो प्रसाद लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि इहा हरि उहा हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरि अभेक हरि अधोक हरि अद्वैक हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमाद हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जल सुई थल सुई नदी सुई नद सुई वृषस्वई पतस्वई छेतस्वई ऊर्धस्वई भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमे तुई जमा तुई मकी तुई मका तुही अभू तुही अभय तुई अछू तुई अछ तुही जतस्तुही।

हुकमल हरि गज गद हाबिबु दारि की दुआ मसान बास करो ही करत है। घुगुमट वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदय मोन सदय मरत है। बिंद के सदा दा हीज की पटैया दे बंदरा सदय पाए नंगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रभि ने ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बने चारी छीन छौना सब दुदाधारी पवन के हरि सो भुजंग जानियत है। तृण के भजैया दान लोभ के तजैया ते तो कवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नब के उड़या ताए पंछी की बढ़िया देश बगला बिडाल ब्रेक ज्ञानी ठानी अत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना है ऐसे ना प्रपंच मन भूलानी अत है। भूम के बसैया ताए भूचरी के जैया कह नब के उड़या सो चिरैया के बखानी है। फल के भचैया ताए बांजरी के जैया कहे आदिश फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आखे भचैया सो चकोर समानी है। सूरज सिवैया ताए कौल की बटाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मत इंदुआ कह सब काल नाव काल जा ताल में रहते है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन जारी लिखी के इस नाम के महंत लही आते है। माधव भवर अटर को कन्हैया नाम कंस को बदैया जम दूत कही आते है। मूड रोड पीटत ना कूड़दा को भेद पावे पूजत न ताए जाके राखे रही आते है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रत पाल जम जाल ते रहते है। जोगी जटा धारी साथी सचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान कार भोग प्या देह पैसा हते है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधो मुख एक पाए ठाडे न बहते है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद भेद औकतेव नेत नेत का कहते है। नाचत फेरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे वही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सन राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरे फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोंदी मद

सोतो ना डंडात अष्टांगा थतीस का कहा भयो रोगी जब डायरो रहे और जब बंद देना मुंडे मुनि हरायो आज इसका कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जागे दीस का शीश पाट कत जागे कान में खजूरा धसे मुंड छाट कत मित्र पुत्र होके शोक सा आग को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमय और दूसना भोग सा कहा भयो भेड़ जो घससी वृक्षण सा माटी को भचैया बोल पूछ लीजिए जोग सा कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर वास करे काग और चील देश देश बिचरत है ज्ञान के विहीन महादान में न हुजे लीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने काबू हूँ संन्यास भेद बने कह दिखावई कहूँ पान हरि कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगा व्यवहारी कहूँ दंडधारी होके लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई पंच बार की तरह पुकारे परे शीत काल कुंज हरगा दहान एकदा पुकार ही कहा भयो जो पे कलमत्र लियो काशी बीची ची चोटा गुठारन सुमार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ो जाड गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पाई है अतापना तापना अनेक तन घायल सहते है जाप के किए तो जब पाई है जा देव पूजना सदी तुही उचरत है नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाई है न लगास पंछी डोल बो करते है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के बासी को भुजंग न तरत है को भयो मुंडे आ सन्यासी को जो

करता करीम सोई राजक रहीम होई दूसरो न भेद कोई भू बन बो एक ही सेव सब ही को गोर देव एक एक ही स्वरूप सब एक जो जान बो देहो राम सी सोई पूजा निवाजो मान सब एक पैन एक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरग हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक दे के बान खाक माता स्वभाव को रलाओ है अल्लाह भेग सोई पुराना कुरान एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है जैसे आग ते कनुका गोड आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में सब मिलाएंगे जैसे एक धूरते अनेक धूर पूरते धूर के कनों का फेर धूरी समाहेंगे जैसे एक नत्ते तरंग को डूब जाते पान के तरंग सबे पानी ही कहाएंगे तैसे विश्व रूपते अभूत भूत प्रकट होए साहिते ऊपर सबे ताही में समाहेंगे केते कच्छ मच केते उनका करत भच्छ केते अच्छ वच्छ होए सब पच्छ उठ जाएंगे केते नव बीज अज पच को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष होए पचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गान कहा काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे तेज युवा तेज में तेज ऐसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है केते गंगवासी के ते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के भरमाए फिरत है करवत सहद के ते भूम में गड़त के ते सुहा में चलत के ते दुखा भरत है गैन में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जग जारे मरत है शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हरे चुआ चार पूज हारे पाहने चढ़ाए हारे लापसी गाय हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हारे गंदरा बजाए हरे किन्नर

सब भज हरे पंडित तपंत हरे तापसी सौ प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना ग्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी सरूपंग सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपंग नहीं जाने जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कहा वह कहा कह बखानो कह क मैं ना आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आदादेव नासी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे अनमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाये उसारे गड़े फेरे मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वै विनासी परे अंग परा परम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग भूतंग अभेखंग ना सतरंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना वोहंग अजोनी अछे आदवै अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्यादंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भरमंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भरमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभाद अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अछे आद अविक्ते अथापे विमुक्तंग अछे आद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना सोकंग ना साकंग परे अंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्मंग ना साके ना भरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सतरंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं कंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाजतामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने गृहं कहूं दे दोखं कहूं औखदि रोग के सोग शोकं कहूं देव विद्या कहूं जात वाणी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साध की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जन विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं कोप की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं अद्र वाणी कहूं छद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकं कहूं ब्रह्म धर्म कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्म कहूं ज्वाल स्वरूपं जरारा देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग रेहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूरण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आर भी तोर की पारसी हो कहूं पहल भी पस्त भी संस्कृति हो
कहूँ देद भाग्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शत्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बिन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाग्या कहूँ वेद रीतं कहूँ रथ विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गुड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रवाहो कहूँ छैल धार छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धी राजा अधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अछे आदत वै विधाता न तरस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते ता प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यग तेज अनुभव प्रकाश अच्छा सर्वद वै अनाथ अन तुड तेज अन खुंड भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अन छिज गात करता सदी हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योदान कहूँ जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय ने गे ने चहन क्षेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम फेक जय कर्म भरम नहीं जात पात नहीं ने गे कही नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं बरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वार नहीं दे ना जय आदंत नहीं रूप रात जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास हाथ नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो ना अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत बे जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अटोल जय मित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलप ए कई कलप जोग साधन दुरंत तन सीत घाम बरखा संत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तद पावत न पार कई उर्दवा देसन ब्रह्मंद कई उर्दमत पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कौ कोम काद कथन कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भच नहीं तदव दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद जग कहूँ वेद री जग आदि करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देद देद भाखार अटंत कई देद देद विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम असो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदव तास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कहूँ सिमरे शास्त्र चरसो करम निवली आद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्व वेद मखो बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जाच गंधर्व गान कहूँ धोव देव कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उच्चार कही भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गेह वाद कई भ्रमत दे देश अनुदान कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लट कंत जाप कई जपत जो कल्पन प्रजंत नहीं तदव तास पायत न अंत कई करत गोड विद्या विचार नहीं तदव दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोगटो सर्व धर्मा विहीन ताप्रसाद तोटक छंद जय जम्पोह जुगण जुव जुवंग भय कंपोह मेर पयाल भुवंग तब तापस सर्व जले रुथलंग धन उचरत इंद्र कुंबेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभूत अछेद अछियंग अन काले अपाल दयाल अस्वंग जय ठटियर मेर अकाल भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग शरम मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भोग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग
जय राग ना रेख ना रोग भणंग जय द्वैख ना दाख ना दोख गणंग जय अंडह ते ब्रह्मंड रचियो द चार करी ना खंड सचियो रस तामस तेज अतेज कियो अनुभव पदा प्रचंड लियो से सिंदर बिंद नगेंद नगंग श्री जाच गंद्र फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उद भुजंग किय देव अदेव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातना पातना जो जुजंग दे तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भुंग जय जंपय किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर ताजिक पांद गणंग भूत भग भवान तुअंग जय अंडज सेता जय रजन रज भूम काश पताल जलंग रच पावक पावन प्रचंड बली बंजास कियो फल फूल कली वो मेरा का निवास हितंग रज रोज का द चंद्र वितंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पावन प्रचंड मई जय जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छद्र उपाय छपाए दिए जय लोग चतर द चार रचे नर गंद्रा देव देव सचे अन धूता भूता शूद मतंग अन गाद अभ्याद नाद गतंग अन खेद भेद अछे नरंग जय चार चतर द चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेग रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आ सिरंग जय बंदर देव अदेव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पारना पावत पूर्मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव आनंद कह जय भूता भूतना भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधोमुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहि नहि कृपा निद पान परे जय फोकर धर्म सब तज है एक चित कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर कोतर है भव भूल न दे पुनर्धर है एक नाम बिना न कोड़ वृत्ति वेद उचार सा सुति जो वारस के चस के रस है ते भूल न काल फंदा फस है तब प्रसान राज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त वृद्ध दा सदयु सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदयु शुद्ध प्रदा अनूप रो स्वरूप है चेतेज मानिया सदयु शुद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिया न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है अधोग दाग तक है भूता भ्रम भेक है न तात मात जात है न पाचयन भरन है अधेग सेग भेक है भी सदयु विश्व भरन है विश्वम्बर विश्वनाथ अभिषेक विश्व भरन है जमी जमान के विकह सदयु करम भरम है अद्वैक है अभेग लेखना ज्ञानी है सदयु सर्व ठौर में अभिषेक अनमानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान नेत नेत के बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइया गंजा देव कहो सुख सिपाही है जिमी जमान के विखय समस्त एक जोत है न घाड़ है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानी है मकीन मकान प्रमाण तेज मानी है न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोख है न दाग है न द्वैग है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जट है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह को कुमार है न नेह है न गे है न देव को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेक है न कर्म है न धर्म है जन्म है अभेक है न तात है न मात है अखल खंड रूप है छेद है भेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है गंज है भंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है अख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है
ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है ना सीत है ना सोच है ना घ्राम है ना घाम है ना लोभ है ना वो है ना क्रोध है ना काम है ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है ना काम है ना क्रोध है ना लोभ लोभ है ना वो है ना द्वैग है ना भेक है ना दुई है ना द्रोह है ना काल है ना बाल है सदी उद्याल रूप है अगंज है भंज है भूत है अभर्म है भूत है हर छेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत अभेग बलिया रूप राग रंग है ना द्वैक है ना भेक है ना काम क्रोध कर्म है ना जात है ना पात है ना चित्र चयन वरण है व्यंत है अनंत ज्ञानिया भूम बीज है सदा छेद तेज मानिया न आद है न व्याद अगाध रूप लेखिया दो प्रताप देखिया न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को लाओ है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है नंग है गंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लो मोहकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेग रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपी न राधपी करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति बनस्पति जपस सदा अगस्त आत जे बड़े तपस्पति विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए सदयु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह दे के आनंद भांत सो दह तो प्रसाद रुआमल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आद नाद गाद प्रसो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आद ब्रग अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात न ताजा को मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रम्य जय चक्र चयन न चित्र आदे उदार आनाद अनंत आद अंत न जानी अभिखा देव दुरंत देव हेव न जाने जय मरम वेद कतेब सनक अवसन केश नंदन पावि न सेब जज किन्नर मच्छ मानद मुर्ग उर्ग पार नेत निरपकारी से सौरंग मुखचार सर्व सपत पतार केतर जाप ही जय जाप आदे अगाते अनाद मृत ताप जंत्र मंत्र न वैकर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे विराज हिराज राज प्रवीण जाज गंधर देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखे विराजे सूत रवि व नाहे घूढ़ गौर न भील भीकर ब्रह्म से स्वरूप राधि व न मध्य उर्द न भूमका सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर जात्र न देव पूजा घोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानी है जय ज्योत शेष नाम सस्पन नेत पुरन होत सो सोध हटे सब सुर विरोध दानो सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके मह कवि गड़द गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम तुरंत वेद भेद न पायो लख्यो न सेब कतेब देव दानो मूड़ मानो जच न जन जेब भूत भवान भूपत नाद नाद नाथ अगन भाई जले थले मैं सर्व ठौर निवास दे गे ने सने अभे नाद अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व दयन भीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालद भेक चक्र चेन्ना बरन जागो जात बात न भेक रूप रेखना रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लाए सर्व खाए सर्व ते अन भंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को व्रत पाल दीन पंद दयाल स्वामी आदे पाल दीन पंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बरन चेना चक्र जागो चक्र चेना कार जात पात न गोत्र गाता रूप रेखना बरन सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरम प्रमाथ दुष्ट अर्था श्रेष्ठ करता जगत में जय गात भूत भव भगवान प्रमाण देव गंज आद अंदना श्रीपद परम पुरग अभंज धर्म के अनकरम जेते कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ करता हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पाल शत्रु खालक दीन दयाल मुकंद अघा डंडन दुष्ट खंडन कालू के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम
सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट अर्था विस्वर्ता आद्रुपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव खंड भूम का जले थले में जब जामंड श्रेष्ठ चार विचार देते जानिय सब विचार आदेव पार्थिव दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रम मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेद न पावे सिर द्रव मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र बना व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न मजा को भूत भवान सत द्वापर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाई है तय पार नारद आदि वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पच्छर पार सो सो थके महासुर पायो नह पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उतरे ओ मस्यु बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल बितैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन सुर कह नर को सुगुणा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जस है कवन कवन पाप का धर्म कवन जो को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा का कहो सो सब का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मन दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक सोग है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन रिष्ट को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा कर्म को कर्म है कहा भ्रम को नाश कहा चितन की चेष्टा कहा चेत प्रकाश दोहरा कहा नेम संयम कहा कहा

तो प्रसाद ईरक तिर भंगी छंद दुर्जल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदृते चतरासुर मारन पति उधारण नरक निवारण गुड़ गते अक्षय खंडे तेर प्रचंडे खंड डंडे अलखमते जय जय होसी मैं कासन वर्दन रम कपड़दन छत्र चिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडासुर दंडन मुंड विहंडन धूम्र विनसन मैक मथे दानव प्रहार नरक निवार अधम उदारण उड़दा थे जय जय होसी मैं कासुर वर्दन रम कपड़दन आज प्रीते डावरु डबंके बबर बबंके भुजा फरंके तेज परंग लंकड़िया फादे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुर अष्टाय चमके भूकण दमके असी दमके फुंग फनंग जय जय होसी मैं कासुर वर्दन रम कपड़दन जय जिणंग चंडासुर चंडन बुण बिमंडन खंड खंडन खून किते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जो जिते सरदार विपरकण दुष्ट प्रकरकण पुष्ट प्रहरकण दुष्ट मथे जय जय होसी मैं कासुर वर्दन भूम का तल उड़दा थे दामिनी प्रहासन सोचभ निवासन शरीर प्रकाशन गुड़गते रक्तासुराचन ज्योत ब्रह्माचन निर्दय नराचन धर्म वृते श्रोणत अचिंत्य अनलवंती जो जयंती खड़ग धरे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजानन श्रेष्ठ उवारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शास्त्र प्रहारण साध मते सैती स्नान अष्ट प्रभान बोल बोल निपाह तेज तुलन जय जय होसी मैं कासुर वर्दन भूम काल पताल जलय चाचर चमकारण चचुर हारण धूम दकारण द्रव मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रदेज अष्ट भुजे जय जय होसी मैं कासुर वर्दन भरम विनाशम धर्म जुजे घुंगरु खमंगण शास्त्र जमंगण फणियर फुंकारण धर्म जुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शुद्ध स्नाहे अगमताहे एक वृते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद कुमार गाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगार ओहन वितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल कासन ले संकटि निवार अधम उदारन तेज प्रकरण तुन दबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाच अच्छे सुतता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापन जपत जीवे जय जय होसी शत प्रकरकण आद नीला गाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तोन तरंगण तच स्तेच सरे कर कसा उठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अदंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोच विशोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभृत सुभासे दृष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धंग घंट का विराजे रुंजन भाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग कोकल सुन लाजे किल्मिक भाजे सुखपराजे मधुरंग दुर्जन दल दज्जय मंतन रिज्जय सब न भजय रोरण जय जय होसी मैं कासुर मर्दन चंड चकरदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर बिते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विधुंसन सुध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आज गाद गाद गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी आदनंगी अगाद गते ब्रिड लाज बिहंडन चच्छुर दंडन तेज प्रचंडन आद ब्रते सुर नर प्रत पारण पदे धारण दुष्ट निवारण दोग हरे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन विश्व विधुंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाश से उन्तन ना से ज्योत प्रकाश से अतुल बल्ले दानवी प्रकार खंड सर्वर वरखण दोष प्रधर खंड वितल तले अष्टायध बाण बोल निबाण संज पनाहर गुड़ गते जय जय होसी मैं कासुन मर्दन आद अनाद गाद वृते दुग दोग ब्रह्मक्षण सेवक रक्षण संत प्रत्यक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दोष प्रदाहे अर्दल गाहे धोक हरे गंजन गुमाने अतुल ब्रह्माने संत जमाने आदंते जय जय होसी मैं कासुन मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुगडुगी दमंक बाघ पबंक भुजा फरंक शुद्ध गते जय जय होसी मैं कासुर मर्दन आज जुगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पते धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड खंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पते धारे मुंड मथे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे
रक्तासुर मर्दन चंड चकर्दन दानव अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरकन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म ध्वजे धूमराज विधुंसन श्रोण चंसुन सम नपा निसोम मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनिल अगाद कथे प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सरबंग विचार जिम कियो आप करते बिच पसार जदब भूदन भय अनंत कहो तौ कहो जथा मैं तंत करता करीम कादर कृपाल भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंग दोग दोग रहत जय नेत नेत सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सात सूरत सिवंत कई पल सूरत से दा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अन छज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंग अद्वय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय अकाल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अन भंज नाद जल धल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पार नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार छह

कमल जा जय सत्र मित्र ने पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन नई रंग रूप जय खेद फेर नई कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग विराज सिद्धंग सरो बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नई रा रंग राग अनछेद तेर अनभिज अदाग जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत नितिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई करट कई कोट रुद्र जुगे आदुआर कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत नितिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे ने संत उपार गनी मन गार है पज पशु नग नाग नाथि सर्व समय सबको व्रत पार है फूकत है जल मै थल मै पल मै कल के नी करम विचार है दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हार है दाहत है दुख दोखन को दल झुंझन के पल मै डल्लार है खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचार है रोजी ही राज लोग राजक रोग रोहान की रोजी न टार है कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेक भगवान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लख्यो भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेब ग्रंथ हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत सेव केन श्री पदमा पद पाए आद अनंत अगाध अदवेग सो भूत भविगवान बह है अंत विहीन अनातम आव अदाग अदोग अछेद्र अक्षय है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्रीपद मापत ए है कामना क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न भय है दे विहीन सने सबोतन ने भ्रक्त गह छह है जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्रीपद मापत ले है रोगंते अर्थोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत गाओ तऊ तन एक ना लागन पावे राखत अपनो कर दय कर पाप संभू न भेटन पावे और की बात कहाँ कह तो सो सो बेट ही के पट बीज बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम अकाल पताल रसा दल जज भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नी पार प्रवाह को नेत ही नेत अभेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे रात न आवे नारद से चतुरानंद से रुनार्ग से सब हो मिल गायो भेद कते बिना भेद लगे सब हार परे रात न आयो पाए सकी नी पार मा बसे सना सनंत ध्यायो ध्यान धरोता को मन में जय को मितो सब जग छायो भेद पुराण कतेब कुरा भेद निरपान सब बज हारे भेद न पाए सके अन भेद को खेद छेद पुकारे राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संगति हारे आद अनाद अगाद अभेग अभेग जपियो तिनी कुल तारे तीरथ गोट के स्नान दिए वदान महाव्रत हारे देश प्रियो कर भेद तपोधन के धरे ना मेल्या हर प्यारे आसन गोट करे अष्टान धरे

अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया माँ सतरन के साल है। दान के दिवैया माँ मान के बढ़ैया ओसान के दिवैया कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया माँ बुद्ध के दिवैया माँ मानुह के मान है। ज्ञानू के गाता माँ बुद्धता के दाता देव कालू के काल माँ कालू के काल है। पूर बिना पार पावे हिंगला हिमालय दावे गौर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे बहुत साधना की देख बाधे आरब के आरबी आराज तेरे नाम है। फरा के फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने ने जे काम है। मरहटा मंगले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फेर हंग के फेरंगा वाली दिल्ली के दलवाली तेरी आज्ञा में चलते हैं। रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर भंग सी बुंदेले पापुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश नियावे तिब्बती दिहाय दो देह को दलत है। जिने तो हे ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरे दानवान को महज गंग धान को अभेज कैयत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काउ पे नधीन साध अधीन कैयत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सरब विद्या के उदारे।

केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख विचार केते कृष्ण अवतार केते राम कही आते है केते सस राशि केते सूरज प्रकाशी केते मुंडे उदासी जोग द्वार दही आते है केते मां दीन केते व्यास ब्रह्मीर केते कुमेर कुलीन केते जाच कही आते है करते हैं विचार पहना पूरन को पावे पारता ही ते अपार निराधार लियते है पूरन अवतार निराधार है ना परावार पाइये ना पार पे अपार कह बखानिये अदवे अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मां रूपों के राशि है नासी कह के मानिए जंत्र हूं ना जात जाकी बाप हूं ना माए ताकि पूरन प्रभागी सो छटा के न मानिए तेज हूं को तंत्र है के राशि को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए तेज हूं को तर है के राशि को सर है के शुद्धता को घर है के शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की सान है विरक्तता की बाने के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सेद को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अच्छे अविनाशी है काम को निंदा के खूबी को दिहिंदा के निमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है कालू के काल है के सतरन के साल के मित्रन को पोकत है वृद्धता की वासी है जोगों को जंत्र के तेजों को तंत्र के मोनी को मंत्र के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्धता को वास है के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है ज्ञान को बचाया है मान को दिवैया जम जाल को कटे कामना कर है तेज को प्रचंड अखंड को खंड महिपन को मंडे के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये ना पार पार वार को पार का जो पाइये ना पार पार वार को पार जागो की जात विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल्लबी धावे पूर्वी न पार पावे आशा ते अनास है देवन को देव माँ देव को देव है निरंजन अभेव नादवे अविनाशी है अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन को देवन के देव माँ देव के देवनाथ भूम के भुजैया मुहे आमा बाल के राजन के राजा माँ साजु के सजा माँ जोग को जोग धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बोधता को हर के शुद्धता की साथी के काल है कुचाल के शीर कैसी शीरावा छात कैसी छतरा ने छपा कैसी जब खालिंद्र के कुल के हंस निशी सिहारू हुरा हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सेंद रूल के परासी पलाव गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगावानी के रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ की रतिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगावानी के सोई आते है हिमा सी हिमालय हर हार सी हल्ला बानेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही आते है चंदन सी चंपावती चंद्रवासी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोई आते है गंगा सम गंग धार कांसी बिलंदावाद की रतिहारी की उजियारी।

सुरहाव हर जिन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मल त्रपता सह मल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीवै दृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्म मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत।

तद आपे सरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान होई। आसा महला चौथा तू कर

तह डूबियले मन एक न चेतस मोड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहा नाहा जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा। भाई परापत मानक देहुरिया गोबिंद मिलन की एह

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तुसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकण को सेव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह पद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, छींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जावुद करख करा कर तारा, प्रजा धर तब देहे अपारा, जब आ करख करत हों कब हों, तुम मैं मिलत दे धर सब हों, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका

कह चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कहे जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन आग्ने सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू नह द्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर धारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज बिचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दऊ चलय राख आप मुहे और ना दलय तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा पे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दय हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संघारो प्रथम

कटे नानक राय सब सिखन को सुख दय जह तह भय सहाय दोहरा ठीकर फोर तिलीस सिर प्रभपुर किया प्यान तेग बहादुर।

को तोहे त्याग कहाँ चित तम धरो अब रीज के देहो वह हम कौ जाऊँ बिनती कर जोर करो जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाय सवैया धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध बिचारे दे।

तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताक त्वार वारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नीत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत की ये फल होई आद ब्याज छुए सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते कू आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कह गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज

निन वस्त्र लग कपड़े पर त्रुपटा ने अमल किया। चारे विद सुचार पड़े गुण तीन चार विचार।